0: और वही तो है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि जंगलों और दरियाओं के अंधेरों में उनसे रास्ते मालूम करो। अक्ल वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक सुपुर्द होने की। समझने वालों के लिए हमने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही तो है जो आसमान से मेह बरसाता है, फिर हम ही जो मेह बरसाते हैं उससे हर तरह की नबातात उगाते हैं, फिर उसमें से सब सब्ज पौधे निकालते हैं और उन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं और खजूर के गाभे में से लटकते हुए गुच्छे और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी मिलते। ये चीजें जब फलती हैं तो इनके फलों पर और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नजर करो। इनमें उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियां हैं।
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

0: उस परवरदिगार के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुशरिकों से कनारा कर लो, और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। और ऐ पैगंबर, हमने तुमको उन पर निगहबान मुकर्रर नहीं किया, और न तुम उनके दारोगा हो।
1: वला तसुब्बु अल्लज़ी

कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा और मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ साफ मजामीन वाली किताब भेजी है, और जिन लोगों को हमने किताब यानी तौरात दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाजिल हुई है, सो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना, और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और वो सुनता है जानता है।

कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजुज इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता लहू या सुअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या कोई गुनाह की चीज हो कि उस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सजा हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी, और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकजीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है और उसका अजाब भी गुनहगार लोगों से नहीं टलेगा।

हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए।

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरा

0: ऑफर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
2: हाँ दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

हिक अरब सिंध हुकूमत अदा कंदी 11 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक खां मिलना आहिनि। सिहत खाते लाइ 17 अरब 43 करोड़, तालीम शोबे लाइ 25 अरब 86 करोड़ रुपया रखिया विया। सिंधी बजट में आबाशी खाते लाइ 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विसिस खाते लाइ 31 अरब 59 करोड़ ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाइ 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख़्तस कया विया। एमपीएस सिंध जे एमएनएस ज़रिए मनसूबा ॾियण वारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाइ 29 अरब मुख़्तस कया विया। कराचीअ जे 25 वॾनि मनसूबनि लाइ 14 अरब 11 करोड़ रुपया ख़सूसी तौर ते रखिया विया। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 1 तहत 1300 नयूं सीसीटीवी ऐं कैमराऊं लॻाइण लाइ 90 करोड़ रुपया मुख़्तस। लाड़काणे में 600 बिस्तरनि जी अस्पताल जी अॾावत लाइ 5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 295 स्कूल्स खे अपग्रेड करण लाइ 9 अरब रुपया रखिया विया।

सिंध जे नए माली साल जी बजट में कचे वारे इलाकन में बुनियादी सहूलतूं ॾियण लाइ 1 अरब रुपया रखिया विया। रज़ाकाबाद वेझो नेशनल हाईवे ते हिकु ख़ास मेडिकल कॉम्पलेक्स क़ाइम करण लाइ 70 करोड़ रखण जी तजवीज़। मठियारी सांगड़ डंडोलयार ज़िलनि में पाणी जी कुदरती ढोरनि जी बहाली लाइ 1 अरब रखिया विया। सिंध जो वॾो वज़ीर मुराद अली शाह नाणे वारे वज़ीर जी हैसियत में बजट पेश कंदो। बजट जी मंज़ूरी लाइ सिंध काबीना जो ख़सूसी इजलास अॼु तलब कयो वियो। MQM बजट इजलास दौरान सख़्त एहतियात जो फ़ैसिलो करे वरितो। सिंध असेंबली जे इजलास दौरान सिक्योरिटी जा इंतज़ाम बि सख़्त कया विया। ईरान सां मुआहिदो कामयाब थियणु घुर्जे। मुआहिदे जा नुक़्ता कुझु ॾींहनि अंदरि मीडिया आलो पेश कंदुसि। अमरीकी सदर ट्रंप जे फ़रांस में G7 इजलास दौरान कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी ऐं UAE सदर शेख ज़ैद बिन अल नहयान सां धारदार मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवणु हो त नओ मुआहिदो ईरान जे एटमी सलाहियत खे रोकींदो। तेहरान एटमी हथियार हासिल करण जी कोशिश कई त जहनम भरपा करे छॾींदासीं। ईरान रुकावट हो। हाणे इब्राहिमी मुआहिदे ते अगबराई लाइ राय हमवार थी वई। अबन हुरमत जुमे ॾींहुं खुली वेंदो। को बि टूल टैक्स न हूंदो। ईरान ख़बरदार कयो आहे त लबनान ते इसराइली कब्ज़ो जारी रहियो त अमरीका सां थियल मुआहिदो ख़तरे में पइजी वेंदो। हमिलो या कब्ज़ो मुआहिदे जी भञकड़ी हूंदो। इसराइल खे लबनान मां निकिरणो पवंदो। ईरानी पार्लियामेंटी स्पीकर बाकिर कालीबाद जे लबनानी हम मनसब सां टेलीफोनिक ते ॻाल्हि ॿोल। संदसि चवणु हो त लबनानी शहरनि जे घर ॾांहुं वापसी थियणु घुर्जे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास अराग़ची चयो त अमरीका ईरान विच में ॻाल्हियुनि जो नओं दौर जुमे खां स्विट्ज़रलैंड में शुरू थींदो। मुआहिदे खे हतबी शकल ॾियण लाइ सालसी टीमूं ईंदड़ हफ़्ते इजलास कंदियूं। शुरूआती मुआहिदे ते बाज़ाबता तौर ते अमल जी शुरूआती जुमे खां थींदी। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमेटी जे सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी जो चवणु आहे त ईरान ख़िलाफ़ हिकु तरफ़ा फ़ैसिला मारण जो दौर ख़तम थी वियो। अमरीका खे पंहिंजी शर्तनि तहत ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते आणण ते मजबूर कयो। अमरीका ईरान मुआहिदे जा तफ़सील हासिल करण लाइ इसराइली दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। इसराइली मीडिया जो चवणु आहे त ईरान सां मफ़ामती यादाश्त नामे ते पहुच लाइ इसराइल अमरीका खे बाज़ाबता तौर ते दरख़्वास्त कई हुई। अमरीका मुआहिदो ॾेखारण खां इनकार कयो। अमरीका ईरान मफ़ामती यादाश ते सही वारे हंधु तब्दील। स्विट्ज़रलैंड जे परॾेही वज़ीर चयो त हाणे तक़रीब जेनेवा बदिरां बर्जन स्टॉक में 19 जून ते थींदी। खोर बाबर सां औरत कारे इल्ज़ाम हेठि कुहाड़ियूं हणी क़तल। वॼणा ज़ख़्मी। पुलिस चवण त ॻोठ वरियो ख़ासकेली में जवाबदार हुसैन ख़ासकेली अमना ख़ासकेली खे गोलियूं हणी क़तल कयो। पुलिस लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतक़िल कयो। जवाबदार गिरफ़्तार।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो

0: अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी।
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर, FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ਚੜ ਸੂਰ ਚੜਾ ਕਰ ਅਤੇ ਅੰਨਲ ਹੱਕ ਅਲੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜ਼ਾਤ ਨਿਰਾਲੀ।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
1: हाँ नहीं अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: रब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छाकजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
4: मजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਹੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ਕ ਨਾ

संजय नए माली साल की 3500 अरब रुपये का वधिक जी बजट अज पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाजमन के पगार में 10% ए रिटायर्ड मुलाजमन की पेंशन में 7% वाद की तजवीज। तरक्याती बजट में वही कटौती। तरक्याती बजट 1018 अरब रुपये का घटा है 720 अरब रुपया मख्स करने की तजवीज। निज सूबाई तरक्याती बजट में 520 अरब रुपया में घटा है 385 अरब रुपया कई वही। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपये के वही इजाफे से 2560 अरब रुपया करने की तजवीज। केटीएन न्यूज सिंधी बजट का मुकम्मल तफसील हथ कर वरता। दस्तावेजन मूजिब जिले के तरक्याती बजट 55 अरब रुपये में घटाए 15 अरब रुपया मुख्तस करने की तजवीज डी वही। बोझ मुतासर घर की तमीर वे प्रोग्राम लाए 97 अरब रुपया मुख्तस। गुडू बैराज जहा 11 ए सखर बैराज जहा 12 गेट तब्दील कर 12 अरब रुपया रखा वह। 1 अरब सिंध हुकूमत अदा की 11 अरब रुपया वर्ल्ड बैंक का मिलना है। सेहत लाय 17 अरब 43 करोड़ ए तालीमी शोबे लाय 25 अरब 86 करोड़ रुपया रखा। सिंध की बजट में आबाशी खाते लाय 30 अरब 80 करोड़, वैक्सीन सर्विस खाते लाय 31 अरब 59 करोड़ ए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाय 40 करोड़ 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया वह। एमपीएस ए सिंध एमएनए जरिए मनसूबा देने वाले सेंडेमल डेवलपमेंट गोल्स जहा मेगा रेथा लाय 29 अरब रखा गया। कराची के 25 वडन मनसूबन लाय 14 अरब 11 करोड़ रुपया खसूसी तौर रखा वह। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमरा लगाने लाय 90 करोड़ रुपया मुख्तस। लाड़काने में 600 बिस्तर के अस्पताल के दावत लाय 5 अरब रखा रखने की तजवीज। 295 स्कूल्स के अपग्रेड करने लाय 9 अरब रखा वह। सिंध नए माली साल की बजट में करीबी सहूलतू देने लाय अरब रखा वह। रजाकाबाद वेझो नेशनल हाईवे के एक खास मेडिकल कॉम्प्लेक्स कायम करने लाय 70 करोड़ रुपया रखने की तजवीज। मटियारी सांगड़ ए टंडोलैयार जिले में पानी के कुदरती दौरन की बहाली लाय 1 अरब रखा वह। संजय वे वजीर मुराद अली शाह नाणे वाले वजीर की हैसियत में बजट पेश कंदो। बजट की मंजूरी लाय सिंध काबीना जो खसूसी इजलास अज थो। एमक्यूएम बजट इजलास दौरान सख्त एहतजाज जो फैसलो कर वरतो। सिंध असेंबली के इजलास दौरान सिक्योरिटी का इंतजाम भी सख्त किया वह। अमरीका ईरान मुआदे की तफसील हासिल करने लाय इसराइली दरख्वास्त रद्द कर छी। इसराइली मीडिया का चवण है ईरान से मफामती यादाइशनामे के पहुंच लाय इसराइल अमरीका तौर दरख्वास्त कई हुई। अमरीका मुआदो डेखारण का इनकार कर छोड़।

परसा औरत कारें इल्जाम हेठ कुहारी हणी कतल बजना जख्मी पुलिस थाना रिपोर्ट भरियो खास किले में जवाबदार हुसैन खास किले आमना खास किले के कुहारी हणी कतल कयो पुलिस लाश ए जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो जवाबदार गिरफ्तार कुहारी बहतर।

0: रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेरा आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: रब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
3: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385569 03003 8559।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 03202018003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा?
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब।

0: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰੇ ਹੂੰ ਜਿਨਾ ਅਸ਼ਕ ਨਾ।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: आशिक होंडा शोफर मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड त्रीन सर्विस का होंडा माम जेनर्स खुसूसी रियायत ते मौजूद होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0303-359-2120
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 5 मिनट सिर्फ GFM वक्ते
2: मेहराब और मेहराज GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: निज सुबाई चर्चा थी, बजट में 520 अरब रुपया में घटाए 385 अरब रुपया कई वही। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपये की वही इजाफे से 2560 अरब रुपया करने की तजवीज। केटीएन न्यूज सिंध के बजट के मुकम्मल तफसील हथ कर वरता। दस्तावेजन मूजिब जिले के तरक्याती बजट 55 अरब रुपये में घटाए 15 अरब रुपया मख्स करने की तजवीज डिनी वही। बोड मुतासर घर के तमीर वे प्रोग्राम 97 अरब रुपया मुख्तस। गुडू बैराज जहा 11 और सखर बैराज जहा 12 गेट तब्दील करने लाय 12 अरब रुपया रखा वह। सेंजिद सिंध की नई माली साल की बजट की मंजूरी लाय सिंध काबीना जो इजलास कुछ देर में शुरू थो। काबीना की मंजूरी बाद वे वजीर मुराद अली शाह बजट सिंध असेंबली में पेश कर। सिंध के बजट में आपाशी खाते लाय 3 अरब 80 करोड़, वेबसाइट सर्विस खाते लाय 31 अरब 59 करोड़, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते लाय 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया वह। एमपीएस ए सिंध के एमएनएस जरिए मनसूबा देने वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा लाय 29 अरब रुपया मुख्तस। कराची के 25 वड़न मनसूबन लाय 14 अरब 11 करोड़ रखा वह। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज 1 तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमराऊं लगाने लाय 90 करोड़ रुपया मुख्तस। लाड़काने में 600 बिस्तरन के अस्पताल की अदावत लाय 5 अरब रुपया रखने की तजवीज। 295 स्कूल्स के अपग्रेड करने लाय 9 अरब रुपया रखा वह। एनएफसी को सिफियो ना है जो को तब्दील न थी सके, शयू तब्दील थी न्यू रहंदियो आइन। वफाकी वजीर राणा तनवीर कौमी असेंबली में बजट ते तकरीर कंदे चो तो बजट अवाम दोस्त है, अपोजिशन बिना जवाब तनकीद कर रही है। राणा तनवीर की तकरीर दौरान पीटीआई ए लीगी एमएनएस में सख्त जुमलन की डेवट भी थी। दुखियन हालत में नून लीग की क्यादत मुल्की मैशत के संभालियो। मुखालिब बजट की वाखाण कन पाया सोच समा वे वफाकी वजीर अता तारड़ ए ममलकती वजीर बिलाल अजहर क्यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। अता तारड़ चो तो पीटीआई मुल्की मैशत जो बेड़ो बोड़ियो नून लीग तारियो है। बिलाल अजहर क्यानी पारा बजट पगारदार तबके लाय रिलीफ करार। कोरबा भरसा औरतकार इल्जाम हेठ कुहाड़ी भूकर जख्मी। पुलिस चवण है तो गोट भर खास किली में जवाबदार हुसैन खास किली आमना खास किली के कुहाड़ी वणी कतल कयो। पुलिस लाश जख्मी के अस्पताल मुंतकिल कयो। जवाबदार गिरफ्तार कुहाड़ी भी हथ। कंदकोट में बिजली की लोड शेडिंग खिलाफ शहरों जो एहतजाज। सियासी समाजी मजहबी जमायतन सिविल सोसायटी पारा सेपको इंतजाम खिलाफ एहतजाज किया वो। बुजारिन चो तो सेपको इंतजामिया की गफलत सबब शहर में बिजली जो संगीन बहरान है। सख्त गर्मी में बिजली की बंदी जो सिलसिलो खत्म किया वे। उड़ेरलाल के घोट अल्लाह बख्श मीर जो रवासन जो बुनियादी सहूलतों की कोर्ट खिलाफ एहतजाज। चूंडियल नुमाइंदन खिलाफ नारेबाजी। घोट के बुनियादी सहूलतों दियण जो मुतालबो। गोठन चाहे तो इलाके का चूंडियल नुमाइंदा वोट वठण बाद गुम आन। केर भी घोट जहा मसला हल कर तैयार ना है। मसला हल क्या वन पटियारी भरसा नारी मुबैना तौर से अगवा। वालिद जो वकार चंड नाले नौजवान के धीए के अगवा करण जो इल्जाम। पुलिस वट रिपोर्ट पर दाखिल कराए छी। मेयर में 8 महीना अग मुबैना तौर से अगवा थियल शागिद याणी खालदा सुमरो जो भी हाईकोर्ट के हुक्म से केस दाखिल। शाहिद जोगरो अब्दुल अजीज उर्फ अजीज उमरानी और बिन नामालूम जवाबदार केस दाखिल। ट्रिब मेहर शाह में जसकम में शहरों जो बदमनी खिलाफ मुजाहरों ए धरणो। मुजाहरीन मूजिब शहर ए बिर पासे में बदमनी चोट चढ़ियल है। पुलिस नाकाम थी वही है।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3-8-5-6-9।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
3: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राब्ते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण।

0: मसान जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: आप सुन रहे थे GAFM।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते, पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569 0300-3583-569।

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड रंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तेहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: तुम्हारी उम्मीद मुआजिज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मुआजिज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है।
1: इल्हाम है जामा तेरा।
0: संजब दंदड़ा तमाम खूबसूरत मासूम सुने समात उनके मुझे दरफा अस्सलामु अलैकुम। बिल्कुल दुआओं के समंदर चाहतों की बारिश उलासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीस से जागता जमी से आसमान तक जिंदगी से मौत तक सांस से तार तक हम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन महरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब प्रोग्राम वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। तो ये प्रोग्राम स्पेशली आप लोगों तक स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है बिल्कुल जनाब, जिसमें आप लोगों को हम बताते हैं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को वेलकम करना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए। और वो तमाम तो लोग, वो जितने भी लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं जो कि अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम में जनाब आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में आप लोगों के साथ बातें की जाती हैं, आप लोगों का साथ हमारे साथ मौजूद होता है और ये सिलसिला जारी और सारी रहा जाएगा पूरी पूरी तीन बजे तक। तो पूरी पूरी तीन बजे तक मैं आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगी, यानी कि आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद रहेगी और मेरे साथ कौन मौजूद रहने वाले हैं वो तो आप मुझे बताएंगे। और इसी के साथ सिद्रा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो कैसे हैं आप सर? ऑप्शन शतीद उनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल हमारे इंतजार कर रहे होंगे। तो आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुके हैं इस प्यारे से प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ जनाब, और हम यहाँ पर बातें करते हैं जी खूबसूरती की। और साथ साथ जो है ना आप लोगों को बताया जाता है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारी जिंदगी में जो कि ना हम फेस नहीं कर पाते हैं, और उनसे सबसे इम्पॉर्टेंट वाली जो चीज होती है वो ये होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कौन से प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से प्रोडक्ट हम जो है ना वो अपनी लाइफ में जो है ना वो एड ना करे। तो इन तमाम तर बातों का जो है ना वो तबसरा होता है इस प्रोग्राम में। आप लोगों को बताती हूँ बहुत सारी बातें जो कि शायद आप लोगों के काम आ जाती हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं, बहुत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, यानी कि हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे

खवातीन जो कि हमें किचन में सुन रही होंगी, तो तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम ही आगा से प्रोग्राम किया जाता है, उसके बाद जो है ना वापस आकर आपको बताते हैं इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ साथ हम जनाब करेंगे, और आपका हमारा साथ जो है वो कैसे जुड़ने वाला है, कौन से लोग हमारे साथ मौजूद है, किस तरह ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करते हैं एक बहुत प्यारे से कसीदे के साथ, तो कसीदा सुनते हैं, उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। लगाते जाइए और खूबसूरतियां हासिल करते जाइए।

0: ओके जनाब, सब प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिदरा आपके साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हो जाइए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा और बताएंगे क्या तरीकेकार है। लेकिन उससे पहले जो है ना, आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या होने वाला, यानी कि सवाल क्या होगा, तो उसकी जानिब भी आ जाते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताएंगे कि मुहर्रम का क्या मतलब है। हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे बताइए आज के मुहर्रम का क्या मतलब है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, टॉपिक को फॉलो करना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं फेसबुक पर, तो जनाब हमारा पेज है जी लाड़काना FM 88.8। अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। तो पेज पर आइए और आप जो है ना, जैसे ही पेज को सर्च करते हैं, पेज को ऑन करते हैं, तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बताइए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तो बिल्कुल जी, आप लोग हमारे प्रोग्राम की रौनक ही होते हैं, जल्दी से हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाइए और हमारे साथ साथ जुड़ते जाइए। इसके साथ साथ मुझे बताइए कि मुहर्रम का क्या मतलब है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद नहीं जानते होंगे, तो मुझे जल्दी से बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो इतने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, तो क्या वो जानते हैं कि मुहर्रम का क्या मतलब है। और इसके साथ साथ आप हमें सुन रहे हैं जनाब, बहुत सारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जा रहे हैं। जल्दी से बनते जाइए और बताइए आप कहाँ कहाँ से हमें ज्वाइन करते जा रहे हो। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को जो बातें बताती हूँ वो जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में होती है। और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र हम क्यों ना करें जनाब, क्योंकि ये प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो बिल्कुल जी, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, बताएंगे हमें जल्दी से। और साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करते हैं 03-15-799-0595। जल्दी से इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर आपके एरिया में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। और इसी के साथ साथ यहाँ पर नजीर खोसो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं बलोचिस्तान से, वेलकम करते हैं और लिखते हैं कि हमारे लिए लम्हा फिक्रियार ये है कि अच्छी बातें ज्यादातर हमारी गुफ्तगू तक हमारी फोन की गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद होती हैं, जबकि हमारे अमल और किरदार से गायब होती हैं। या बिल्कुल तमाम सही गाल गया है। और प्रिंस अफजल शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, थैंक यू सो मच। और वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, क्या हाल है आपके, मैं ठीक, कहते हैं आप की माशाल्लाह प्रोग्राम बेहतरीन होते हैं। फ्रॉम जेकब आबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं, सो बहुत शुक्रिया। और फिरोज अली बरोही हमारे साथ मौजूद हैं, हाय। और जी हमारे साथ ही आकाश अली मोरो से मुलायम इस्लाम मदद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अदी केड़ा हाल है अवां जा, असा तवां जो प्रोग्राम फैमिली सा गड बुधंदा आयो, प्लीज प्ले नोहा हर जमाना मेरे हुसैन का है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लगाते हैं आपके लिए। और कहते हैं रहमान अली पीरजादो, दिलेर जान पीरजादो फ्राम मोरो, आपका शो बहुत अच्छा है और थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ, आपकी मोहब्बतें हैं जनाब। और मुलायम मुजाहिद बोजार हमें सुन रहे हैं ठूफ चूसल से, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा जी, केड़ा हाल है अवां जा, सफा ठीक है, तां बुधाई की आयो। और मलिक जफर रता हमारे साथ मौजूद है, आप हमारे साथ हैं जी, मोहम्मद बख्श पाकिस्तान रेलवे गेट में, तो
1: नादे अली को पढ़ना सुन्नते रसूल।
0: ओके जी, यानी कि आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। उसके अलावा पोस्ट को आपने लाइक और शेयर करना है बहुत ज्यादा वाला, ताकि बहुत से लोगों को हम बता सके कि प्रोग्राम जो है ना आप लोगों को बताया जाता है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। और बिलाल अली कहती है अस्सलाम वालेकुम, की आयो सिद्रा, हाँ ठीक है, तां ॿुधाए कीअं आहियो बिलाल, ऐं बिल्कुल तव्हांसां खे जॉइन कंदा वञो तव्हांजो। प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं हूंदी जो की प्रोग्राम जो हिसो हूंदी, ऐं तव्हां सां कचहरियूं कंदासीं, ऐं तव्हां सां गॾु जेको आहे प्रोडक्ट जो ज़िक्र कंदासीं, प्रोडक्ट जे बारे में खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं कंदासीं, तव्हांजो असांजो साथ पूरी पूरी 3 बजे ताईं मौजूद रहंदो। सो तव्हां कारी न वञो, हिते वेठा हुजो, हाणे टाइम थियो आहे जनाब शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलूं था, उन खां पोइ जेको आहे न वापसी जल्दी तव्हांजी मोटी जो, तव्हां कारी न वञो, ऐं असां सां गॾु मौजूद रहो, ॿुधंदा रहो प्रोग्राम व्हाइट एश एंड टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-8051।

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
1: न अदा
3: यार, आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

प्रोडक्ट्स के दावन से, तो अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो कोई गलत बात नहीं होगी क्योंकि ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो बिल्कुल जी, अगर यहाँ पर खूबसूरती की बातें होती हो और खूबसूरती वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत सा फायदा तो होगा। अगर आप ये सोचें, अगर आप ये समझें कि आप लोगों के लिए मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं जो कि फुल नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए हैं, और उससे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि आपके ऑल स्किन टाइप के लिए तैयार किया गया हो, तो आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, जैसे ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छा फील होगा, क्योंकि आप लोग वो चीजें वाजे देखेंगे जो कि चीजें शायद आप कभी सोच रहे होते थे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए इतने अच्छे और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप इस्तेमाल करने बैठते हैं तो आप खुद ही कहते हैं कि भाई हमारे लिए तो है ना वो सारे प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के पीछे भागना है, बस आप लोगों ने व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये सिलेक्ट कर लेने हैं और आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो बिल्कुल जी, अगर उन लोगों को बताते चलें जिनको नहीं पता कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि अगर आप अपनी ब्यूटी को निखारना चाहते हैं, ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह का प्रोडक्ट है। जैसे कि आप लोगों को नाइट क्रीम मिल रही है, आप लोगों को फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्नी ट्यूब मिल रहा है, साबुन मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इजीली जो है ना वो परचेज कर सकते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में, आप जाते हैं बस परचेज करके आते हैं, और व्हाइटिश ब्यूटी सोप अवेलेबल है, व्हाइटिश फेस वॉश मौजूद है जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, साबुन जो है वो एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार किया गया है, और उसके अलावा जो है ना व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम भी एवोकाडो एलोवेरा और मिल्क से तैयार की गई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें व्हाइटिश लवली क्रीम की, तो व्हाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है, वो लोग जो कि भाई मेकअप नहीं लगा पाते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, तो आपने व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो व्हाइटिश लवली क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों को क्या फायदा पहुंचता है, तो इसकी जानिब आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि जब आप व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है जो कि भाई आप लोगों का जो है ना ही इतना ज्यादा वक्त लेता है, ना ही आपके इतने सारे पैसे लगते हैं। आप लोगों के पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे बस आप लगाते हैं और आप रेडी हो जाते हैं। आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई इस तरह का सीन आपकी जिंदगी में चल रहा है कि भाई हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है और लेकिन हमने ग्लो भी करना है और हमने जो है ना वो खूबसूरती भी हासिल करनी है, तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और ना सिर्फ ये आपकी खूबसूरती को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है बल्कि इसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, और सनस्क्रीन ऐड करने का रीजन ये था कि भाई आप लोगों को जो है ना वो सूरज के ये जो नुकसानदार असरात होते ना इनसे भी आप लोगों की स्किन की हिफाजत की जाए। तो व्हाइटिश लवली क्रीम जो कि फुल ऑफ विटामिन का फार्मूला है, उसके अंदर जो है ना वो सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, तो बहुत ही शानदार तरीके इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है आप लोग तमाम ब्यूटीज के लिए। जितने भी खूबसूरत लोग हमें सुन रहे हैं और खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हैं, खूबसूरतियां हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप लाजमी मेरे कहने पर ट्राई करके देखिएगा। और इसमें कोई भी एज लिमिट भी नहीं है कि भाई आपने इस उम्र में जाकर लगाना है, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मर्द हजरात हो खवातीन हो, तो आप सारे इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरती जो है ना वो आप देखेंगे कि आपको किस तरह मिलती जा रही है। और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब का अगर हम जिक्र करें, तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब जो है ना ये उन लोगों के लिए, उन खवातीन और मर्द हजरात के लिए, टीनेजर्स हो या फिर आपकी एज कितनी भी ज्यादा लेकिन आके एक्नी नहीं जा रहे हैं, एक्नी तो चले जा चुके हैं लेकिन आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात हैं वो नहीं जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसा निशान है, कोई कट है, कोई जलने का निशान है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है ना परफेक्ट प्रोडक्ट साबित होगा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। ये आप नाम याद रखिए क्योंकि जब आप अपने लिए परचेज करने जाते हैं तो आपको नाम आना चाहिए। तो नाम है जनाब डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब। ये आप परचेज करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब की खास बात ये है कि इसे आप जो है ना अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर एड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आप लोगों की जो फेयरनेस है वो भी आपको मिलती रहेगी, और आप लोगों के चेहरे पर जो गैर जरूरी निशानात हैं, कोई भी कट है, कोई इस तरह का कोई निशान है या फिर एक्नी प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज्यादा होती है, तो वो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है
ये कंट्रोल कर देगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हैं तमाम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं और आपकी हर एरिया में, हर दुकान पर, हर गोठ में, हर सिटी में मैं चाहती हूँ कि अवेलेबल होने चाहिए। तो जल्दी से अवेलेबल कराइए। उसके लिए थोड़ी सी आप भी मेरी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, वो ऐसे कि आपको जो नंबर बताया जाता है प्रोग्राम के अंदर, मुझे नहीं ना पता कि कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो आप थोड़ा सा जो है ना ये काम कर दिया करें कि जो नंबर आपको बताया जाता है उसके ऊपर आप कॉल या फिर मैसेज छोड़ दिया करें, उन्हें बताएं कि भाई आप कहाँ से शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहे वाइजेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ताकि वो अवेलेबल करा सके। तो जल्दी जल्दी से आप जो है वो नंबर डायल कीजिए, और नंबर है 03-15-799-0595। ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिएगा ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो सके वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं तफसील के साथ, लेकिन फिलहाल जो है वो बारी आ चुकी है कि वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप अच्छे से जान सके। और इसके साथ साथ मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से जो सवाल पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है।

आप जो है वो पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, और यहाँ पर आप लोग हमारे साथ मौजूद दीजिए आपके फीडबैक्स की जाने बातें। अच्छा आकाश अली कहते हैं आप ही मैं मोरो से हूँ। ओके आकाश भाई आपको वेलकम करते हैं, मोरो वाले सब खूबसूरत लोगों को वेलकम किया जाता है। और उसके अलावा जी अब्दुल गफार हमारे साथ हैं, कहते हैं माइनर मेलसी से मास्टर अब्दुल गफार, मोहम्मद बिलाल और मास्टर सईद नूरशाही और मास्टर वजीर अहमद चौहान हमारे साथ हैं। चलें सब भाइयों को वेलकम किया जाता है। और एम अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी, सो एम अंसारी लिखते हैं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, हिजरी साल की पहली तारीख करबला की याद और इस्लाम के लिए आले रसूल की दी गई कुर्बानी को इस नातवा बंदे का आज जाना सलाम सलाम एंड वेलकम इन शो, गुड इवनिंग ऑल। चलें जी वेलकम करते ए मंसारी आपको, बहुत ही अच्छी सी कमेंट के साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और ये हमारे साथ हैं बिलाल अली, कहते हैं अल्लाह से ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए जैसे माँ से होता है, थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो। बिल्कुल जी, मेरा ये एक मानना है, मतलब जाति एक मेरा ये तजुर्बा है शायद, या फिर ये मेरा मानना है कि अगर आप दुनिया में कुछ भी कर लें, कितने ही लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, आप कितने ही कामयाब हैं, कुछ भी हैं आप, लेकिन आपका जो ताल्लुक है ना वो अल्लाह से बहुत मज़बूत होना चाहिए। एक वही है जिससे अगर आप ताल्लुक अच्छा बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सुकून के साथ गुजरती है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो बेसकूनी वाली ज़िंदगी जीते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। असल उसका पता है कि रीज़न क्या होता है, यही कि वो लोग अल्लाह से दूर होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बस ये दुनिया की भाग दौड़ होती है, उनकी ज़िंदगी में उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने क्या करना है। तो अगर जब आप अल्लाह से दूरियां बना लेते हैं तब आपकी ज़िंदगी जो है वो बेसकूनियों की जानिब चली जाती है। तो अगर आप ही चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो और आप खुश रहें तो आपका ताल्लुक अल्लाह से बेहतर होना चाहिए और कोशिश

ओके जी, सो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का क्या मतलब है, और दोदा अली भाई हमें सुन रहे हैं, वेलकम करते हैं। फहीम शेख हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। रेशम गली लाड़काना खां तमाम से सगड़ मौजूद आयो, आपका शो सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ, क्या बात है जी, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और किशोर भाई हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, अता खुश आयो जी, सफ़ा ताम उदा की आयो। और बिलाल कहते हैं कि मौला अली अलैहि सलाम फरमाते हैं, लोगों से बदला मत लिया करो क्योंकि खरा फल खुद ब खुद दरख से गिर जाया करते हैं। बिल्कुल जी। और गुड गुड हमारे शो में शामिल है जी, आपको भी वेलकम करते हैं। चाचा खाले जुनी जो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और भक्त अली सियाल हमें सुन रहे हैं जनाब, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हैं जी दर्दे दिल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। वरियामली जतोई कहते हैं सिदरा शो में अवहां के दिलन सा वेलकम था कयूं, अवहां के भी वेलकम था कयूं बाबा। और चाचा खालिद कहते हैं आज शो का आगाज तो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी, ये जो 4-5 दिन हम प्रोग्राम करेंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, एहतराम बहुत जरूरी है।

अच्छा किशोर भाई कहते हैं यदि मु आंसर डिलीट कयो आ अगर समझी सगो तो बेहतर आ न तवा जो जको जवाब हो ना वो सही हुयो मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना चलें ठीक है आप पैनल पर भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं पैनल पर भी आपके मैसेजेस हैं बिल्कुल सबको जो है ना वो शामिल प्रोग्राम रखा जाएगा और आप जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें ये आप लोगों की मोहब्बतें होती हैं जो आप हमारे पोस्ट से करते हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और जनाब बताइए कि क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर अभी तक पेंडिंग में है तो इतना ज्यादा मत सोचा करें कि आपकी खूबसूरती जो है ना वो ऐसा है कि भाई जब आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं जब आप अपने चेहरे को वो प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं जिनकी आपकी स्किन को जरूरत है तब आपकी स्किन जो है ना वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खराब ना हो तो आपने वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देना है तो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि आपको इजीली मिल रहे हैं तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए वहां से नाम लेकर तलब कीजिए और डायल कीजिए 03 15 799 0595

अच्छा, दर्दे दिल हमारे साथ हैं। कहती मुहर्रम हमें सबर, कुर्बानी और हक पर कायम रहने का दर्स देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि सच्चाई और इंसाफ के लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है, मगर हक का रास्ता नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल जी। और कहती हैं, ओ मेरी जानी अलीजा सलाम बोल रही और शो सुन रही हैं। दोनों परियों को वेलकम किया जाता है। एम अंसारी आपने शायद, हाँ जी चलें ठीक है, लगाते हैं जिन जिन लोगों ने फरमाइश कर दी है। कोशिश करूंगी कि सबके जो कसीदे हैं, कलाम हैं, वो शामिल प्रोग्राम किए जाए। ठीक है। अच्छा, चाचा खालिद कहते हैं, मुझे तो डी स्किन क्रीम के प्रोडक्ट्स में फेस वॉश और सोप एंड शैम्पू खपे, बट मिस्टर इरफान सियाल साहब डू नॉट। अच्छा चलिए, आपने रब्ता किया उनसे, वैसे बताइए जरा। मुझे तो जितना पता है कि वो इरफान साहब जो है ना, वो सारे लोगों को रिस्पांस देते हैं, और अगर आप उनसे रब्ता करते हैं तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपने कहाँ से परचेज करने हैं, या फिर जो भी चीज़ें आप उनसे पूछते हैं वो आपको जो है ना, वो अच्छे से गाइड कर देते हैं। तो आप नंबर के ऊपर रब्ता करते रहें। वैसे अभी जितने मार्केट में प्रोडक्ट आए हैं तो आपको वही मिलेंगे ना, बाकी जो बनाए जाएंगे तो वो आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। तो अभी डी स्किन का फेस वॉश और जस्ट क्रीम मौजूद है, तो आप ये दोनों चीजें परचेज कर सकते हैं। ओके जी। और उसके अलावा कहते हैं कि अल्लाह पाक से ताल्लुक और उसकी मखलूक से भी, क्योंकि हर दिल में अल्लाह पाक है। ये तो सही बात है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं कि ना कि आप सिर्फ दुनिया की भीड़ में जो है ना वो गुम हो जाएं। और साबिर खान हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। अॼु दिल सयो सिदरा जो प्रोग्राम ॿुधूं ऐं शामिल बि थियूं, सो बाबा तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधूं पिया। अर्ज़ीशान राजपूत हमारे साथ हैं। हेलो वासा भाई, भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, सो वासा भाई आपको भी खुश आमदीद कहा जाए।

ओके जनाब, से प्रोग्राम में आपका हमारा साथ जो है वो पूरे 3 बजे तक आए, आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं पूरी 3 बजे तक। और यहाँ पर प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: पाकिस्तान की मंजूरी पे स्केल रिवाइज थी साल 2022 2025 जो इलाज रिलीफ कराए वे वजीर मुराद अली शाह चवण है बजट में हर तबके जो ख्याल रखे वो है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायतों से अमल कदे गुर्बत के खात्मे के लिए खास कदम खाया व्यान औरतन की घट में घट उजरत बाबत भी अहम फैसलो किया वो है। वे वजीर मुराद अली टीम की बजट सिंध असेंबली में पेश कर

0: सिंध जी तरक्याती बजट में वधी कटौती 1,000 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब रुपया करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक्याती बजट बि 520 अरब मां घटाए 385 अरब रुपया कई वई। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपयनि जी वरी वॾे इज़ाफ़े सां 2560 अरब रुपया करण जी तजवीज़। KTN न्यूज़ सिंध जी बजट जा मुकमल तफ़सील हथ करे वरिता। ज़िलनि जे तरक्याती बजट 55 अरब रुपयनि मां घटाए 15 अरब करण जी तजवीज़ शामिल। बोर्ड मुतासिर घरनि जी तामीर वारे प्रोग्राम जे लाइ 97 अरब रुपया मख़्तस।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क। आप सुन रहे थे KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, 3 रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8-5-69।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
3: राब्ते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204372 and 0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
4: न अदा।
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
5: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

तो बिल्कुल जी इस्तेमाल करके देखिए जी, स्किन ब्यूटी क्रीम गारंटी के साथ आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन फेस वॉश, तो डी स्किन फेस वॉश भी आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी स्किन के ऊपर जो है ना वो डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे फायदा ये होता है कि आपकी स्किन जो है ना वो हाइड्रेट रहती है, आपके चेहरे की स्किन ग्लोइंग हो जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना ये अंदर तक जाकर आपके चेहरे की खूबसूरती को निखारने में काम करता है। और अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाई ये लड़कियां लगा सकती हैं, लड़के नहीं लगाएंगे, लड़के लड़कियां सभी लगाने वाले हैं। और ये आप दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, अपना अच्छे से फेस वॉश कीजिए। और फिर अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये एक नाइट क्रीम है। तो रात के टाइम इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है। पाकिस्तान में 2 से 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि विटामिन ई बीट्स से तैयार किए गए हैं, तो उसी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है। तो इतना अच्छा और इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। और जनाब जब आपको रिजल्ट्स मिल जाए अच्छे वाले, वो भी 2 रातों के इस्तेमाल से, तब आप मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ जी हमें रिजल्ट्स मिले हैं। और अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो साथ ही साथ आप जरूर से डायल कीजिए 03-15-799-0595। ओके जी, नंबर डायल करते रहिए और अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए। और जनाब वहां से जाकर आप परचेज करते जाइए क्योंकि परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तभी तो आप लोगों को खूबसूरतियां मिलेंगी ना। और इसी के साथ साथ जो है ना, मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में जो सवाल पूछा है वो भी जरा दोबारा से रिपीट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो आप लोगों से सवाल पूछा गया है वो ये है कि आप मुझे बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है। बिल्कुल जी, आप मुझे ये बता रहे हैं कि मुहर्रम का मतलब क्या है। और साथ ही साथ अगर आप जानते हैं तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, आपके मैसेजेस हैं, आपके कॉमेंट्स हैं जो कि हम शामिल प्रोग्राम रखते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमें जो है वो मैसेज करना चाहते हैं, तरीकेकार नहीं पता आपको, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और हमें सेंड कीजिए 8881 पर। ओके जी, उसके अलावा जी लाड़काना FM 88.8 के पेज पर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। अच्छा, यहाँ पर फहीम शेख कहते हैं, सत्रा मुझे बताइए तो कुजा मन कुजा का मतलब क्या होता है। तो कुजा मन कुजा का जो मतलब है वो है आप कहाँ और मैं कहाँ, यानी तू कहाँ और मैं कहाँ। ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि आप अगर ये गौर से कलाम सुनते हैं तो आप लोगों को समझ आती है बात। तो एक बहुत ही खूबसूरत ये कलाम तैयार किया गया है तेरा। जो कि अगर आप लोगों को, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको समझ नहीं आता होगा, तो अगर समझ नहीं भी आता फिर भी आप जो है ना ऐसे अच्छे से जो है ना वो वाइब हासिल करते हैं और आपको अच्छा लगता है सुनकर। तो बिल्कुल जी, ये एक ऐसा कलाम है जो अगर आप जितना भी सुनते हैं तो आप कभी भी जो है ना ऐसा महसूस नहीं करते कि भाई ये क्या आप चला रहे हैं, ये क्या हम सुन रहे हैं, बल्कि आप जितना सुनते हैं उतना आपको अच्छा लगता है। इसी के साथ साथ ये बहुत एक प्यारा सा कसीदा किसी ने मुझे फरमाइश कर दी थी शायद, तो हम यहाँ पर सुनते हैं। और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए।

ओके जी, इमरान अली बिरोही भाई हमारे साथ, कहते हैं बाजी मुहर्रम का मतलब है बिल्कुल सही, और कहते हैं कि मेरी फितरत में नहीं है किसी को भूल जाना साहेब, भूलते वो हैं जिनको अपने आप पर गुरूर होता है। क्या बात है इमरान भाई, आपको वेलकम कहा जाता है। और ये हमारे साथ हैं ओके जी गुट नबीदाद बम्बरो नारी खां इमाम डिनो बम्बरो भाई हमारे साथ, ये प्रोग्राम तमाम नारी सा भेण भली तवा खुश हो। जी जी बिल्कुल मां खुश आए, तां बुधा की आयो ठीक ठाक आयो। इरम कहती है अस्सलाम वालेकुम मुझी प्यारी दिलबर दोस्त शाला, मां ठीक है तां बुधा की आयो। और हैं जी हमारे साथ इमरान भाई, कहते हैं बाजी चले इमरान भाई, अब आप जो है ना मुझे पैनल पर मैसेज करते हैं बस यही काफी है तो आप बस यही पर मैसेज कर दिया करें और बहुत शुक्रिया, झगड़े मत किया करें ठीक है। इतनी शरारतें जो होती ना वो सूट नहीं करती ज्यादातर मुझे लगता है लड़कों के ऊपर, तो बस थोड़ी थोड़ी कम कम शरारतें किया करें और जरा सोबर बन के रहें।

ओके जी, मायरा भी हमारा शो सुन रही है. मायरा आपको भी वेलकम कहा जाता है. साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करती रहिए और हमें जरूर बताया करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से या फिर डी स्किन के फेस वॉश के इस्तेमाल से आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं. अगर आप ऐसा है कि क्रीम नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप फेस वॉश लगा सकते हैं और फेस वॉश लगाने के बाद जो है ना आपको जब अच्छे से रिजल्ट मिल जाए तब आप कोशिश करें कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत से भी बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते जाएं. तो जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन

अच्छा ये हमारी सादगी दी सिस्टर असांजे सिटी में कोन पे मिले डी स्किन ब्यूटी क्रीम और सिरिंद कंपनी वारा कॉल भी कोन था अटेंड कर चले अच्छा ता कॉल भी ट्राई किया चलो मां कोशिश कदम ता जो ही मैसेज को वो कंपनी ताई पहुंचायो बने जे तमा जी कॉल अटेंड कई बने आई तमा जे एरिया में डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जके ना अवेलेबल कराया बने ठीक है सोना भाता जो मोहब्बत ता प्रोग्राम में शामिल थिया अनखा अलावा जको आ अगर तमा इस्तेमाल कयो पया या फिर इस्तेमाल करन चाहो पया त सब का पेरी गाल या हुंदी है जाहिर त तमा जे एरिया में ता जे गोठ में ता जे शहर में मिलन जरूरी है ही प्रोडक्ट तो मिलंदा न तो ता वठंदा की या फिर ता कंफ्यूज होना ता सा सिटी वनो या फिर अगर ता दूर दराज नथा वनी सको तो उने जला इयो ही मतलब सोलो तरीको आए ता पांचे एरिया में अवेलेबल करायो उने जला ता के नंबर जको बुधायो ने तो ने ता राप्तो कयो अगर नथो अटेंड थी नंबर तो पोई ता मखे बुधायो जी असा ता जो शिकायत हु जके ना वो मथे पहुंचायो ठीक है ओके जनाब सर प्रोग्राम में आपका हमारा साथ पूरी पूरी 3 बजे तक का और 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं तो आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: शदीद गर्मी सबब शहर हल्का कपड़ा पायो।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, आईमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51।
1: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383-85-569-0300-33-8556-9।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीजे खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-38-65-453।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेहरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेहरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1565-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

ओके जनाब, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जनाब, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं हमें बता रहे हैं, और साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं और कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं ये भी हमें बताते जा रहे हैं. और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहा, तो डायल करते जा रहे हैं 03157990595. और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताया जाता है कि जनाब किस तरह से आप जो हैं वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट हो, उनके इस्तेमाल से अपनी खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन रख सकते हैं. खूबसूरती हासिल करना, खूबसूरती को मेंटेन करना, ये दोनों एक थोड़ी अलग अलग सी चीजें हैं. खूबसूरती हासिल करना मुझे लगता है कि बहुत आसान काम है, लेकिन खूबसूरती को मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है. तो जब ये आसान काम और मुश्किल काम जब आप लोगों के साथ भी हो और आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि भाई हमने खूबसूरती कैसे हासिल करनी है, खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन कैसे करना है, तो ये दोनों चीजें जो है ना आप लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताया जाता है कि क्या तरीकेकार फॉलो करके आप ना सिर्फ खूबसूरती को हासिल कर सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती को मेंटेन भी रख सकते हैं. तो चाहे आप मर्द हजरात हो, खवातीन हो, हर कोई जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, उनका इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में इजाफा लाते जाएंगे. और साथ साथ आपके लिए हर तरह का प्रोडक्ट मौजूद है, यानी कि ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई मैं ये प्रोडक्ट लगाता हूँ लेकिन ये वाला प्रोडक्ट नहीं है. तो हर तरह का प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल रहा है जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहें. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं तो जिन लोगों ने अभी अभी सुना है, स्टार्ट किया या फिर स्टार्टिंग से लेकर जो हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. और साथ ही साथ जनाब मैंने आज आप लोगों से प्रोग्राम में सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं मुहर्रम का मतलब क्या है, और अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वैसे ही तो आप 888 और फेसबुक पर हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. ओके जी, पोस्ट को आपने लाइक और शेयर करना होता है.

ओके जी, सो फहीम शेख हमारे साथ हैं. उन्होंने काफी टाइम से कसीदे की फरमाइश कर दी है, तो हम जी लगा लेते हैं उनकी पसंद का कसीदा जो कि हम साथ में सुनने वाले हैं.

ओके जी, बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा आप यहाँ पर सुन रहे हैं और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें भी करेंगे जनाब, और आप लोगों के साथ साथ जनाब शेयर भी करेंगे कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को खूबसूरती जो है वो किस तरह से मिलने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आप लोग जाने तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना आपकी जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक ऐसी मयारी ब्यूटी क्रीम है जो आपकी जिल्द की जो है ना वो अगर आपकी जिल्द में नमी आ चुकी है तो उसको जो है ना वो बरकरार रखती है और चेहरे को नरम मुलायम और तरोताजा बना दी है। और साथ साथ अगर आप इस्तेमाल करते हैं बाकायदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आप लोगों की स्किन जो है ना वो रोज रोज यानी कि डेली डेली उससे भी ज्यादा अच्छी होती जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये क्रीमें तो सिर्फ लड़कियां लगाती हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी लगा सकते हैं। लड़कों की स्किन के मुताबिक भी तैयार की गई है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की खूबसूरती को बहुत से भी बहुत ज्यादा अच्छा कर देगी। और उसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगा रहे हैं तो साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश करते हैं, अपना फेस क्लीन करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब दोनों चीजें आप साथ में इस्तेमाल करते हैं तो वैसे भी आप दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल कीजिए। और जी अपने एरिया में अवेलेबल कराते जाइए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं जी दुआ मलिक, हमें सुन रही हैं। दुआ मलिक आपको वेलकम कहा जाता है। जमशेद फारूकी हमें सुन रहे हैं।

ओके जी, तो चाचा खालिद कहते हैं ये जो नंबर आप बता रही हैं जरा धीरे धीरे बताएं ताकि मैं लिख सकूं, तो आप जरा लिखिए नंबर, मैं आपको ना बताने लगी हूँ, ठीक है? ओके, सो नंबर है 0315799505 0315799505. ये नंबर है, आप डायल कीजिएगा. अच्छा, अली अकबर बरोही भाई कहते हैं सकरेंट से आपका शो सुन रहा हूँ, सिद्रा जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम लाजवाब है, वेलकम, आपको भी वेलकम कहा जाता है. दर्द दिल कहती है कि चंदा तुम्हारा शो सुने बगैर सुकून नहीं आता, अल्लाह सच्ची बताए. और बिलाल अली कहते हैं आज हम लोगों को उनके कपड़ों से पहचानते हैं लेकिन मौला अली अलैहि सलाम हमें सिखाते हैं कि इंसान को उसके दिल से पहचाने. बिल्कुल जी. ओके जी, संजीव जयपाल हमारे साथ मौजूद है. संजीव जयपाल आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है. और साथ साथ हैं जी किशोर भाई के अदी मथे भी शिकायतूं नियो था. हाँ बिल्कुल, नींद आई तांके का शिकायत है, बुधायो तो तांजी शिकायत भी पहुंचाईंदासी. और बिलाल अली लिखते हैं कि मुहर्रम हराम हमें करबला की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने हक सबर और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां पेश की. करबला हमें जुल्म के सामने डट जाने और सच का साथ देने और अल्लाह की रजा पर राजी रहने का दर्श देती है. लिहाजा इस मुकद्दस महीने का एहतराम करें और अपनी दुआओं, इबादत और अच्छे इखलाक के जरिए मुहर्रम हराम की बरकतें हासिल करें. और करबला हमें सिखाती है कि हक की खातिर कुर्बानी दी जाती है मगर हक का सौदा नहीं किया जा सकता. बिल्कुल जी. ओके जी, ये बहुत ही प्यारा सा कसीदा हमने लास्ट में लगा लिया है जिसकी हमें फरमाइश एम अंसारी ने कर दी थी. और मोहम्मद ताहिर लुंड बलोच हमारे साथ मौजूद है, विलेज वलीदात खान लुंड नजद सेठारजा से. प्रोग्राम लाजवाब है, सलाम तमाम जो वनी तो सैयद इमदाद अली शाह बुखारी जवार मोहम्मद बचल शंबानी कामरान महेसर अनवर सोलंगी साहब जिनाली. चलिए बहुत शुक्रिया.

चाचा खालिद कहते हैं मुझे डी स्किन ब्यूटी क्रीम देखने में भी अच्छी लगती है। हाँ वाकई ये ऐसा जब आप लगाएंगे तो आपको मतलब ऐसा अमीरों वाला फील आएगा, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। वाकई फेस वॉश की बात की जाए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की बात की जाए, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।

ओके जी, क्या बात है। और साथ साथ फजीला सिंधी कहती हैं कि डियर सिस्टर, मैं भी फेस वॉश लूंगी, स्वीटी क्रीम यूज नहीं करती, गर्मी है बहुत, सर्दी में लूंगी। चलें, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, फेस वॉश का आप इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ साथ हमारे साथ हैं जी ये अफहा डेहरी, सऊद डेहरी फ्रॉम नवाब शाह कहते हैं मौला इस्लाम मदद अदी शो तुम्हारा नाइस आए, थैंक यू सो मच प्यारा भा तुम मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पया। और अलमास सोलंगी हमारे साथ हैं, अली वारिस सोलंगी तुम्हारा मोहब्बत प्रोग्राम बुधो पया। ओके जी, सो अज के प्रोग्राम में माँ अवा का सवाल पूछो, यानी कि आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक था वो बिल्कुल ये था कि आप मुझे बता रहे थे कि मुहर्रम का मतलब क्या है, तो इसका जवाब जो है वो है जनाब इज्जत वाला महीना, हुर्मत वाला महीना। तो अगर आप, यानी कि बहुत से जो मेरे लिसनर्स इन्होंने मुझे सही जवाब दिया, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया। और यहाँ पर टाइम अगर देखा जाए तो आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त हुआ जाता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी वरी जिकवान सुभाने थियण वाली है, यानी कि 1 बजे का 3 बजे ताई असा तवा सा डेली गड हुंदा आयो, बस जुमे वारे नी असा जी मोकल हुंदी आ है। सो पांजो लाई सरो ख्याल रखदा आई, मुखे दुआ में याद रखदा, इते का गलती थी हो जे को एडो लफ्ज गाले हो जे को तवा के सुठो न लगो जे, तो नला माजरत कयूं था। सो मोकलानी ना है बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सरकारी मुलाज़मनि जी पघारुनि ऐं पेंशन में वफ़ाक जेतिरी 77% वाध करण जी मंज़ूरी। पे स्केल रिवाइज़ थींदो। साल 2022 ऐं 2025 जो एडहॉक रिलीफ गॾाए नओं पे स्केल 2026 कयो वेंदो। वरी वज़ीर मुराद अली शाह चयो त बजट में हर तबिके जो ख़्यालु रखियो वियो आहे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी हिदायत गुरबत जे ख़ात्मे जे लाइ ख़ासि क़दम खया विया आहिनि। औरतनि जी घटि में घटि उजरत बाबति अहम फ़ैसिलो कयो वियो आहे। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह मंझंदि 3 वॻे बजट सिंध असेंबली में पेश कंदो।

सिंध जी तरक्याती बजट में वॾी कटौती 1018 अरब रुपयनि मां घटाए 720 अरब रुपया करण जी तजवीज़। निज सूबाई तरक्याती बजट बि 520 अरब मां घटाए 385 अरब रुपया कई वई। गैर तरक्याती बजट 418 अरब रुपयनि जे वॾे इज़ाफ़े सां 2560 अरब रुपया करण जी तजवीज़। केटी न्यूज़ सिंध जी बजट जा मुकमल तफ़सीलत करे वरिता। ज़िलनि जी तरक्याती बजट 55 अरब रुपयनि मां घटाए 15 अरब करण जी तजवीज़। बोर्ड मुतासिर घरनि जी तामीर वारे प्रोग्राम जे लाइ 97 अरब रुपया मख़्तसु।

0: सिंध जी बजट में आबपाशी खाते के लिए 30 अरब 80 करोड़, वर्क्स एंड सर्विसेज खाते के लिए 31 अरब 59 करोड़, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग खाते के लिए 40 अरब 86 करोड़ रुपया मुख्तस किया वह। एमपीएस ए सिंध के एमएनए जरिए मनसूबा देने वाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेगा रिथा के लिए 29 अरब रुपया मुख्तस, कराची के 25 वन मनसूबन के लिए 14 अरब 11 करोड़, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज वन तहत 1300 नयू सीसीटीवी कैमराज लगाने के लिए 90 करोड़ रुपया मुख्तस, लाड़काणा में 600 बिस्तर की अस्पताल की अदावत के लिए 5 अरब रुपया रखने की तजवीज, 295 स्कूल के अपग्रेड करने के लिए 9 अरब रुपया रखा गया।
1: सोलर ए बैटरी
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमात, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 2196 851

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-33-8569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, शाख और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-3865-453।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-800।
1: खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3385-569-03-00-33-8569।

0: कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
1: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385 569 0300 33 8 5 6 9।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहराबपुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई?
0: न अदा।
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

रहा हूँ मेरे दिल में समाए हो किस तरह, हालांकि दो जहां में समाते नहीं हो तुम। ये माँ बदो हरम, ये कलीसा और दया।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-00-27234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-04372 0242-460100

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आजी कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: जल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307-359-2120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

सिंध जे नए माली साल लाइ 3562 अरब रुपियनि जी बजट पेश। पघारुनि ऐं पेंशन में 7% वाध करण ऐं 2022 ईस्वी ऐं 25 वारा एडहॉक अलाउंस बुनियादी पघार में ज़िम करण जो ऐलान। बोरियत जो घटि में घटि अजूरो 40,000 मां वधाए 43,000 करण जो ऐलान। कराचीअ में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क़ाइमु करण जो बि ऐलान। केटी बंदर खे आलमी बहरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल ऐं तवानाई मर्कज़ बणाइण जो अज़म। सालियानी तरक़ियाती बजट में 298 अरब रुपियनि जी कटौती। गैर तरक़ियाती बजट में 418 अरब रुपियनि जी वाध जी तजवीज़। तरक़ियाती बजट 1018 अरब रुपियनि मां घटाए 720 अरब करण जी तजवीज़। सूबे जे तालीमी शोबनि लाइ 620 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। सिहत खाते लाइ 393 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। मकानी इदारनि लाइ 155 अरब रुपया रखिया विया। ज़रात खाते लाइ 21 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बजट तकरीब खे ख़िताब करे चयो त बजट में को बि टैक्स शामिल नाहे कयो वियो। NFC में सूबे जी हक़नि ते को बि ठाह नाहे कयो। क़ौमी इस्तेहकाम लाइ 260 अरब रुपियनि जो इंतज़ाम करण ते इतफ़ाक़ कयो आहे। सिंध में ग़रीबनि लाइ मुफ़्त होम सोलर सिस्टम जो ऐलान। स्कीम लाइ 18 अरब रुपया रखिया विया। 2,75,000 घरनि खे मुफ़्त सोलर होम सिस्टम ॾिनो वेंदो। हारनि खे बि जदीद मशीनरी इंश्योरेंस ऐं जदीद टेक्नोलॉजी ताईं रसाई ॾियण जो ऐलान। मुराद अली शाह चयो त सूबे में 17 लख घरनि जी तामीर लाइ बि फंड्स जो इंतज़ाम कयो वियो आहे। सिंध जी बजट में सूबाई राजधानी कराची जी तरक़ियाती बजट लाइ वॾी रक़म मुख़्तस। मजमूई तौर शहर जे 816 मनसूबनि लाइ 664.3 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 110 मेगा मनसूबनि लाइ 1 अरब रुपया रखिया विया। 167 जारी मनसूबनि लाइ 500 मिलियन मुख़्तस। एयरपोर्ट खां स्टार गेट ताईं नओं फ्लाईओवर ठहंदो। मलीर हॉल्ट खां शाराए फैसल ताईं राइट टर्न अंडरपास जो मनसूबे बजट में शामिल। रेड लाइन BRT लाइ 13.2 अरब ऐं येलो लाइन लाइ 3.5 अरब रुपया मुख़्तस। गुजर नाले स्ट्रॉम वाटर ड्रेन ऐं सर्विस रोडनि लाइ 80 रुपियनि जा मनसूबा। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लाइ 4.7 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन ऐं सॉलिड वेस्ट मनसूबनि लाइ बि रक़म रखी वई। K4 पाणी मनसूबे ऐं वाटर सप्लाई निज़ाम जी तोसीअ वारा मनसूबा बि जारी रहंदा। मलीर एक्सप्रेस वे ते नवां इंटरचेंज ऐं राब्ता रोड ठाहिण लाइ बि रक़म रखी वई। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह बजट तकरीर कंदे चयो त सिंध हुकूमत कराचीअ जी मेगा मनसूबनि ते ख़ासि ध्यानु ॾेई रही आहे।

सिंध जे मादर इल्मनि लाइ बि बजेट में अरबे रुपया रखण जी तजवीज़। कराची यूनिवर्सिटी लाइ 3.90 अरब, एनएडी यूनिवर्सिटी लाइ 2.83 अरब, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाइ 1.99 अरब, डाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइ 1.42 अरब, जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी लाइ 1.39 अरब, IBA कराची लाइ 76 करोड़, सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी लाइ 75 करोड़, कराची मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी लाइ 59 करोड़, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ लाइ 51 करोड़, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी ऑफ लियारी लाइ 41 करोड़, BSU टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स डेवलपमेंट लाइ 39 करोड़ रुपया रखा वाया।

NICVD लाइ 12 अरब, SICVD लाइ 14 अरब, TB कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 93 करोड़, AIDS कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 37 करोड़, PPHI लाइ 24 अरब, API प्रोग्राम लाइ 24 अरब, इंडस अस्पताल लाइ 8 अरब, किडनी सेंटर कराची लाइ 30 करोड़, हसन सलेमान मेमोरियल अस्पताल लाइ 2 अरब 14 करोड़, प्राइम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बैरिया टाउन लाइ 20 करोड़, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाइ 3 अरब 50 करोड़, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथोलॉजी लाइ 1 अरब रुपया रखने की तजवीज़।

0: बजट स्पीच तो सुन ले, बजट स्पीच सुन तो ले आप।
1: अरे बात इतनी
0: अच्छा पहले ये
1: यहाँ
0: पार्लियामेंट में फैसला करें,
1: ट्रेजरी में
0: पहले फैसला कर ले। आप बोले
1: वन वे ट्रैफिक चल रहा है सर, वन वे ट्रैफिक चल रहा है, एक असेंबली का माहौल होता है, प्री बजट होती है, दीगर चीजें होती है, सब कुछ बाईपास।
0: अभी देखा नहीं है आपके हाथ में अभी बजट आया और आपने फैसला भी कर लिया।
1: पूरी रिवायतों को तो पास किया जाए भाई। अगर ट्रेजरी बेंचेस है तो ऑपोजिशन की भी बेंचेस है, ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं। मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे ही चलाते रहे जनाब। आपके पास सक्सेरी थी, आप जो चाहे कर सकते हैं आप करें, फिर आप जो करें, फिर हमारा जो दिल है हम वो करेंगे। हम एहतजाजन इस बजट स्पीच का हम जो है वो बॉयकॉट करते हैं, और हम जो बाकी बात है बजट के आगे आने में जो सूरत हाल बनेगी उसमें करते हैं।

एन एफ सी को सहीफ़ो नाहे जेको तब्दील न थी सघे शयूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि। वफ़ाकी वज़ीर राणा तनवीर क़ौमी असेंबली में बजट ते तक़रीर कंदे चयो आहे त बजट अवाम दोस्त आहे, अपोज़िशन बिना जवाज़ तनक़ीद करे रही आहे। राणा तनवीर जी तक़रीर दौरान पी टी आई ऐं लीगी एम एन एज़ में सख़्त जुमलनि जी ॾे वठे। ॾुखियुनि हालतुनि में नू लीग जी क़यादत मुल्की मैशत खे संभालियो, मुख़ालिफ़ बि बजट जी वाखाण करे रहिया आहिनि। सुद समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारड़ ऐं ममलकती वज़ीर बिलाल अज़र कयानीअ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ चयो त पी टी आई मुल्की मैशत जो बेड़ो ॿोड़ियो नू लीग तारियो आहे। बिलाल अज़र कयानी पारां बजट पघारदार तबिके लाइ रिलीफ़ करार।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाय खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाय फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: हरुभरु
1: तो पवे ना, हरुभरु कौन तो पवे, को मसलो जरूर आए।
0: अच्छा
1: हाँ मसलो आते रहे तो मते में जरूर तो पवे, न तो पोतो ठीक ठाक न हो जी। बिल्कुल बुधायूं था बेहतर है डॉक्टर साहब के रूबरू। डॉक्टर साहब छा कना हो हरपुर जाए मेरा पुर गनखाई बस तो
2: जी से। बिल्कुल तहां सही चे तो बथे जो सूर बजाय का बीमारी न हुंदी है, के बीमारी दी अलामत हुंदी है, चाहे जुकाम जे करे बथे सूर थी सके तो, ब्लड प्रेशर जे करे, बुखार जे करे, केड़ी भी तकलीफ जे करे सूर थी सके तो, जे करे देखे बेहतर ही चवंदासी तो जको रूबरू डेखारे उन में के भी मर्ज में ढराए पर न करण खोपे उनके वक्त ते जको सो डॉक्टर के देखान खोजे। इन के अलावा जको आए सो जके मैसेज जे हवाले से दियो त जो पहली गाल कई सी तो जी कड़े भी मर्ज में मिसाल जो ब्लड प्रेशर है जैसे कंजो वधी तो वे तो उनके सुस्ती न करे, उनके जैसे वधी तो वे तो उनमें नमकियात ज्यादा इस्तेमाल करे तो, फैट वाली शूं ज्यादा इस्तेमाल करे तो, सण भी ज्यादा इस्तेमाल करे तो उनकी जो है सो उनके परहेज जरूर करण घुर्जे। जैसे कंखे शुगर है तो मिठाण की उनके परहेज जरूर जो है सो करण घुर्जे। सेहत जो पाँ वद में वो सो ख्याल कर लापरवाही हरगिज न करो, कंखे भी का भी तकलीफ है तो पाँच करीबी डॉक्टर के जरूर दिखारे, वरना जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक मेहरापुर शहर में हफ्ते जहाँ छह ढी मौजूद होना, जैमें टे ढी वहाँ वही रिपीटेशन करें तो जुम्मो छंछर आचर असा टे ढी चेकअप फीस फ्री होंगी है,
1: वहाँ
2: बिल्कुल दिखा सको दवाओं वहाँ अलग से वी हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर मुझे 0301-96-8051।
1: तमाम घनी महरबानी डॉक्टर साहब, तुम असो कीमती वक्त दिनो दोस्तों वहाँ के बुधाई डॉक्टर साहब तमाम सुनो मैसेज दिनों तो पंहिंजो ख्याल रखो, पंहिंजे सेहत जो ख्याल रखो। असीं बि दोस्तनि खे इहो चवंदा आहियूं त किरे जो केर बि न, बीठे जो सभ को आहे, तंहिं करे पंहिंजो ख़्याल रखो, पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखो। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचार ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटरा पेट्रोल पंप कुर्डी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। इन अजोको प्रोग्राम जो भी वक्त पहुंचे तो पुजानी से जैसे भी दुआन के लिए हथ खो तो असें दुआन में जरूर याद रखो। बे प्रोग्राम ती पे मेज़बान हाकिम अली जिस्कानी के दींदा इजाजत। अल्लाह निगहबान, अल्लाह वाही।

0: अरब भा घटाए 720 अरब करण की तजवीज वे वजीर फवाद अली शाह चयो तो को भी टैक्स शामिल ना कयो एनएफसी में सूबे के हकन ते को भी ठार ना कयो। सिंध में अमन अमान जेलन ए पुलिसिंग लाए 216.5537 अरब कानून ए पार्लिमानी मामलन लाए 27.5065 अरब जरात वारे शोबे लाए 38.5022 अरब लाइव स्टॉक ए फिशरीज शोबे लाए 11.6 अरब आपाशी शोबे लाए 41.5 अरब रुपया रखने की तजवीज तवारा शोबे लाए 66.48 अरब मकानी खाते लाए 201.39 अरब इतलात इश्तहार लाए 10.856 अरब स्कूल एजुकेशन की प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी ए हायर सेकेंडरी लाए 446.9958 अरब रुपया मुख्तस कॉलेज एजुकेशन लाए 41.214 अरब यूनिवर्सिटीज ए तालीमी बोर्ड्स लाए 9.417 अरब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाए 8.18 अरब रखने की तजवीज डिनी वही। सिंध के मुख्तलिफ खातन में 864 नयू असामियों पैदा करने ऐलान बोर्ड मुतासर घर की बीहर तामीर लाए 5.2 अरब पुठते पियल तबकन की जिंदगी बेहतर बनाने लाए 13.3 अरब रखने की तजवीज बेरोजगारी कार्ड लाए 2.5 अरब सिंध पीपल सपोर्ट प्रोग्राम ए पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाए 2.5 अरब रुपया मुख्तस।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569 0300-3583-89

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 54 456 तौकीर अहमद 0306

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
4: 0301-399-2836
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जी ए एफ एम 94
6: पंद्रहीं सदी अज अली जो नालो वठो दुखो पर फकीरन तो मरकजी अली के भला चवन पना अलाह वो पर फकीर सो कलाम तानी खिदमत में नानो साई जो जदो अली का अमान वो पना वो
7: अली भी अमान हुई

ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ।

میرا دراز سے بھی اللہ نے کہا.

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नजगर्लस डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर।
1: पांडानंद के मुफ्त होम सोलर सिस्टम जाती बजट 1,568 अरब रुपयनि जी बजट पेश 36 अरब खां वधीक जो खसार पाकिस्तान ते थियल मुआहिदे ते तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रुपयनि मां घटाए 400 अरब रुपया कयो वियो। ग़ैर तरक़ियाती 118 अरब सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क़ाइम करण जो ऐलान। जेटी बंदर खे आलमी बहरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल ऐं तवानाई मर्कज बणण जो अज़म। वॾे वज़ीर वाद अली शाह चयो त को बि नओं टैक्स शामिल आहे। एनएफसी में सूबे जे हक़नि ते को बि ठाह नाहे कयो। सिंध जी बजट में तालीमी शोबे लाइ 620 अरब ऐं सिहत लाइ 393 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। अमन अमान जेलनि ऐं पुलिसिंग लाइ 216.537 अरब। कानून ऐं पार्लियामानी मामलनि लाइ 27.565 अरब। ज़रात लाइ 38.22 अरब। लाइव स्टॉक ऐं फिशरीज लाइ 11.6 अरब रखिया विया। आबपाशी शोबे लाइ 41.1 अरब। मकानी खाते लाइ 201.39 अरब। इतलात खाते लाइ 10.856 अरब। मुख़्तस स्कूल एजुकेशन जी प्राइमरी मिडल सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446.958 अरब रुपया मुख़्तस। लाइ 114 यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स लाइ 9.417 अरब ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.18 अरब रखिया विया। सिंध जे मुख़्तलिफ़ खातनि में 864 नयूं असामियूं पैदा करण जो ऐलान। बोर्ड मुतासिर घरनि जी ॿीहर तामीर लाइ 5.2 अरब। पुठिते पियल तबक़नि जी ज़िंदगी बहितर

खां लाइ 13.5 अरब रखण जी तजवीज़। बेनज़ीरहारी कार्ड लाइ 2.5-5 अरब, सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम ऐं पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 2.5-2 अरब रुपया मुख़्तस। NICVD लाइ 12 अरब, SICVD लाइ TB कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 93 करोड़, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लाइ 37 करोड़, PPH लाइ 24 अरब, API प्रोग्राम लाइ 24 अरब, इंडस अस्पताल लाइ 8 अरब, किडनी सेंटर कराची लाइ 30 करोड़, हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल लाइ 2 अरब 14 करोड़, प्राइम हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बहरिया टाउन लाइ 20 करोड़, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन लाइ 3 अरब 50 करोड़, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथोलॉजी लाइ 1 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सिंधी बजट में सूबाई राजधानी कराची जे तरक्याती बजट लाइ वॾी रक़म मुख़्तस। मजमूई तौर शहर जे 816 मनसूबनि लाइ 664.5 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। 110 मेगा मनसूबनि लाइ 1 अरब रुपया रखिया विया। 167 जारी मनसूबनि लाइ 500 मिलियन मुख़्तस। एयरपोर्ट खां स्टार गेट ताईं नओं फ्लाई ओवर ठहंदो। मलिर हाल्ट खां शाहराह फैसल ताईं राइट टर्न अंडर पास जो मनसूबो बि बजट में शामिल। रेड लाइन BRT लाइ 13.5-2 अरब ऐं येलो लाइन लाइ 3.5 अरब रुपया मुख़्तस। गुज नाले स्टोरम वाटर ट्रेन ऐं सर्विस रोडनि लाइ 1 अरब रुपयनि जा मनसूबा। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज लाइ 4.5-37 अरब रखण जी तजवीज़। 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन ऐं सॉलिड वेस्ट मनसूबनि लाइ बि K4 पाणी मनसूबे ऐं वाटर सप्लाई ज़रा मनसूबा बि जारी रहंदा। मलिर एक्सप्रेस वे ते नवां इंटरचेंज ऐं राब्ता रोड ठाहिण लाइ बि रक़म रखी वज़ीर कराची जे मेगा मनसूबनि ते ख़ासि ध्यानु ॾेई रही आहे। सिंध जे नए सिटीज़ लाइ 133.54

0: मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446.958 अरब रुपया मुख़्तस, कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.214.97.78.1।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ खातनि में 800 आसामियूं पैदा करण जो ऐलान। पोर्ट मुतासिर करण जी ॿीहर तामीर लाइ 5.2 अरब, पुठिते पियल तबकनि जी ज़िंदगी बहितर बणाइण लाइ 13.5 अरब रखण जी तजवीज़। बेनज़ीर हारी कार्ड लाइ 2.5 अरब, सिंध पीपल्स सपोर्ट प्रोग्राम ऐं पीपल्स हाउसिंग स्कीम लाइ 2.5 अरब रुपया मुख़्तस।
0: NICVD लाइ 12 अरब, SICVD लाइ 14 अरब, TB कंट्रोल प्रोग्राम लाइ

0: मोटर्स थे पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-35-92120
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 0301-399-2836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेस खुद रिलो। डी स्किन शो
1: पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मजो असर निमाज खाद तई आई हर रात अरीजन जो आहन क्लिनिक नजर रेलवे फूड मेहरा 0300338
2: शोरूम साइकिल अख्तियार इर्शाद नाइन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी है रेट दे दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटो से पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इर्शाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते दे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सूमर

वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896

0: तव्हां जी स्किन डल ऐं पियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: 72 billion with no new taxes budget 2026-27 of the government of Sindh for the 13th time including 11 consecutive budgets. Sir, I'm proud to announce that the Sindh government is going to undertake the KT Bandar Maritime and Economic Corridor. I'm pleased to announce that the government of Sindh has initiated the process for establishing the Sindh International Financial Center as a world-class platform for investment, finance, innovation and dispute resolution.
2: सिंध जे नए माली साल लाइ 3562 अरब रुपयनि जी बजट पेश 36 अरब खां वधीक जो खसारो हूंदो। मुलाज़मनि जी पघारनि ऐं पेंशन में 77% वाध जो ऐलान। फौरियतनि जो घटि में घटि उजूरो 40,000 मां 43,000 रुपया कयो वियो। फलक 75,000 खानदाननि खे मुफ़्त होम सोलर सिस्टम ॾियण वारी स्कीम उतारफ। सालियाने तरक़ियाती बजट में कटौती। तरक़ियाती बजट 1,018 अरब मां घटाए 980 अरब रुपया मुख़्तस कई वई। वफ़ाक सां तय थियल मुआहिदे तहत तरक़ियाती प्रोग्राम 575 अरब रुपयनि मां घटाए 400 अरब रुपया कयो वियो। गैर तरक़ियाती बजट में 418 अरब रुपयनि जी वाध। कराची में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क़ाइम करण जो ऐलान। केटी बंदर के आलमी बहरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल ऐं तवानाई मर्कज़ बणण जो अज़म। वरे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त को बि नओं टैक्स शामिल नाहे। NFC में सूबे जे हक़नि ते को बि ठाह नाहे कयो।
3: सिंध में 50 करोड़ रुपयनि खां वधीक ज़रई आमदनीअ ते 8% सुपर टैक्स लागू। प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऐं प्रोमोटर्स ते फी स्क्वायर यार्ड 100 रुपया। इंश्योरेंस एजेंट्स ते 2% ऐं इंश्योरेंस ब्रोकर्स ते 3% टैक्स लागू। वॾे वज़ीर सिंध फिनांस बिल सिंध असेंबलीअ में पेश करे छॾियो। री इंश्योरेंस सर्विस, अदावती सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट्स ऐं ब्रोकर्स ते टैक्स लागू। लीगल सर्विसिस, टैक्स कंसल्टेंट्स, रिपेयर सर्विसिस, ब्यूटी ऐं फिज़िकल सर्विसिस ते बि टैक्स जे दायरे खां ॿाहिरि हूंदा।
2: सिंध जी बजट में तालीमी शोबे लाइ 620 अरब ऐं सिहत लाइ 393 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। अमन अमान जेलनि ऐं पुलिसिंग लाइ 216.5, 537 अरब कानून ऐं पार्लिमानी मामलनि लाइ 27.565 अरब, ज़रात लाइ 38.5, 22 अरब, लाइफ स्टॉक ऐं फिशरीज लाइ 11.5, 6 अरब रखिया विया। आबपाशी शोबे लाइ 41.5, 1 अरब, मकानी खाते लाइ 201.5, 49 अरब, इतलात खाते लाइ 10.5, 856 अरब मुख़्तस। स्कूल एजुकेशन जी प्राइमरी, मिडल सेकेंडरी ऐं हायर सेकेंडरी लाइ 446.5, 958 अरब रुपया मुख़्तस। कॉलेज एजुकेशन लाइ 41.5, 214 अरब, यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स लाइ 9.5, 417 अरब ऐं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाइ 8.5, 18 अरब रुपया रखिया विया।

0: सिंध के मुख्तलिफ खातन में 864 नयूं आसामियूं पैदा करण जो ऐलान। बोर्ड मुतासिर घर की बीहर तामीर लाए 5.2 अरब। पुठते पियल तबकन की जिंदगी बेहतर बनाने लाए 13.3 अरब रखने की तजवीज। बेनजीर हारी कॉर्ड लाए 2.5 अरब। सिंध पीपुल्स सपोर्ट प्रोग्राम ए पीपुल्स हाउसिंग स्कीम लाए 2.5 अरब रुपया मुख्तस किया गया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।